गुरु प्यारी साध संघ जी, जिवें कि साडे वीर जी फरमा रहे सी, राग सतगुरां दी सानू बरकत है, इनायत है, ये मौसीकी, ये संगीत सतगुरां ने सानू दिता है ताकि शब्द साडे मन विच वस सके, असी कीर्तन कर सकीए, कीर्ति कर सकीए। कलयुग में है कीर्तन प्रधाना, हर कीर्त कलयुग पद उत्तम। सो उस भाव नूं मुख रख के जदों इस बाणी दा अध्ययन करदे आं ते बाहर सृष्टि नूं वेख के, कायनात नूं वेख के, बसंत नूं वेख के, उस दा प्रफुल्लन वेख के, मन विच उस कादर प्रति, उस खालक प्रति आभार दा, थैंक्स दा भाव जिहड़े ने व्यक्त हुंदे ने। असीं थैंक्स करदे आं कि कैसी नेचर है। पर सतगुरां ने सानू इको उपदेश दिता है कि उस कादर की कुदरत वेख के असी अपनी होमे का त्याग करना है। असी तो तुच्छ मात्र, और वक् वक् शब्दों राही सानू समझा रहे ने। ये सारे महापुरख इको बोली बोलते ने, गुरमत की बोली, इको विचार। और भगत रविदास जी दा शब्द है, तुकाए गर्भ है बावली, जैसे भादो कुंभराज तू तिस्ते खरी उतावली। तेरी जिंदगी, तेरी होंद, पिंडा वाले नूं पता है कि रूड़ियां दे विच छोटियां छोटियां भादरों दे महीने च कुंभा उग पैंदियां ने, जिन्हां दी लाइफ बड़ी शॉर्ट हुंदी है। तो इस तरह ही साडे जीवन दे विच भी साडी जिहड़ी होंद है वो बड़ी नामात्र है, बड़ी तुच्छ जिही है। तो फिर गर्भ क्यों करिए, आओ इस शब्द नाल जुड़िए। और सतगुरु फिर जो फरमा रहे ने, होमे दे त्याग प्रति, देख फूल फूले अहं त्याग त्यागे, चरण कमल पागे, तुम मिलो प्रभ सुपागे। आओ भगत रविदास जी नूं याद करदे हां इस शब्द नाल जुड़िए।

मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्योतिष दी वडियाई ज्योतिष भावै सोई करसी फिर

विचारा शिवति परे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सुवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं।

मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन

तिस पाछै बचरे चरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइयै, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावहु संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।

सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सला

जिसनों कृपा करही तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै।

वरना त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू कर।

हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब

तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत।

ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताका कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसार।

से तजकीनी, पुत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संग

सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु, ताके ताप तनक मह हरहु, रिद्ध सिद्ध करमू सब होई, दुष्ट छाह चव सकै न कोई।

आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना

सुनहु संतहु शब्द तरहु प्यारु, साचा नाम मेरा आधारु। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, अनद सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसु।

साकत निंदक दुष्ट खिन माहे विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख हो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी भगवती पातशाह दस प्रथम भगवती सुमर कहे गुरु नानक लई त्याय भयंकर गुर से अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन्होंने आवैता है सब साई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक श्रू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाल दर दर के घातर से बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी के पंच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपियां टपियां इन्हें नाम जपया वन चकिया देख चलाई ते वाही देख डेढ़ किता देना प्यारे से त्यार नहीं कमाई देते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। जन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हे सही दिते बांधवान कटवाए कोपरिया लुहाइया चरखड़िया रिचड़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा से किसी तक सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई देते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। पंजाता ट्रांसफर गुरुद्वारा दत्ते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेता है चित आवण का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहब ने चरिया है देखते कि फतेह बृत की पह पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुगु जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदस्य आज तार जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब गुर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आदले पंथ को छोड़िया गया है उन्होंने दे खुले दर्शन की राह सेवा संभाल देता है अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु दादा।

पत्ति सत्कार योग शासन जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। महाराज बख्शी चार सकते बड़ी श्रद्धा भावना सहित पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहब संपूर्ण पाठशाला कीते ने उपरंत संध्या समा जान के सोदर रहा साहब पाठशाला कीते हन अरदास चाल के प्रिय व्रत बारे बख्शे पवित्र नाम सर्व कीते ने सत्संग जी अज्ज सभा समा सतान सत्संग जी आप जी ने गुरु साहबां ने सवाल समा बख्शिश किया है। सो सत्संग जी आप हमेशा बेनती करते हैं कि हर रोज जरूर गुरकर आया करो ओम मत्था टेको अरदास करो इन्नी देर तक चाहो हमारे डिगी होती बैठ के सत्संग जी तुम कथा की दरबार सरण कर सकते हो। सत्संग बेनती है तुम्हें पता है कि जिम्मे नार्थ चार सौ जो डबल बिल्डिंगा बन रही उन्होंने वास्ते बेंत माए लोड़ है बेंत प्रोग्राम अपने दसान सफर करते हैं माया पेटी की है वटभागी हैं। तो सत्संग जी बाकी जिन्होंने अभी तक दसान सफर नहीं किया सारे बेनती है जरूर गुरु कर माया पेटा करके अपनी माया सफर करने की बात करो। सत्संग जी आप संगतन बेनती है कि जो परिवार घर बैठ के नाल सहज पाठ कर रहे हैं वटभागी हैं सो श्री भाई रजिंद्र सिंह संपर्क करके ते अपना जैसा प्रोग्राम है उन्होंने दस दौ तो दसनगे कि पाठ कदों होना किवें होना तो कदों भोग पैणगे उन्हें तुम अपने चार जू साझे करो। सो भाई रजिंद्र सिंह का नंबर है 408-712-4145। सो सत्संग जी जरूर अपना आपना टेलीफोन कर लवो। बाकी सत्संग जी जुलाई 22 तो एडमिशन शुरू हो गया खालसा स्कूल का। सो आपने बच्चों खालसा स्कूल क्योंकि छुट्टियां खत्म हो रही हैं खालसा स्कूल ओपन हो रहा है इस वास्ते अपने बच्चे जरूर दाखिल करा के इस समय तक अपने आने यत्न करो। तो सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि अगस्त 2 नूं भाई पविंदर सिंह जी अजूरी लागी दरबार साहब वाले साढ़े पास पहुंच रहे हैं इन्होंने साढ़े को कीर्तन करना है 11:30 तो लैके 12:30 तक अगस्त 2 नूं 11:30 तो 12:30 तक उन्होंने कीर्तन करना है। अगस्त 7 सिंह जी अगस्त 7 नूं है प्रकाश श्री गुरु हरचिंद सच्चे पातशाह जी 8वें पातशाह जी का उन्होंने जरूर हाजिर पढ़ो तो गुरिया बख्शियां का धन्यवाद करिए। सत्संग जी अगस्त 8 नूं है मोर्चा गुरु का बाग अगस्त 7-9 तक कीर्तन हो रहा है भाई रणजीत सिंह जी ढाटियां वाले साढ़े पास पहुंच रहे हैं जिन्होंने 7-8-9 तीन दिन लगातार साढ़े को कीर्तन करना है 7-8 नूं कीर्तन करेंगे 7-8 शामा नूं 7-8 दो तरीकों करेंगे 6-9 7-8 नूं करेंगे 6-9 तो 9 नूं करेंगे 11-2 बजे तक 12 एतवार नूं 11-2 PM तक। सो सत्संग जी अगस्त 17 नूं है संगरांद भादों के महीने की आपने हाजरियां भरनिया ने अगस्त 22 नूं है सिख हैरिटेज नाइट इन सैन होजे अर्थ क्विक गेम 7:30 PM हाजरियां भरो। सत्संग जी अगस्त 27 नूं है जन्मदिन प्यारे भाई दया सिंह जी का आप हाजरियां भरो। तो सत्संग जी अगस्त 3 नूं है संपूर्णता दिवस श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब संपूर्णता हुई सत्संग जी। तो सितंबर 27 है लेबर डे सितंबर 11-13 31 लाखों का की दरबार हो रहा सत्संग जी 11-12-13 31 लाखों का की दरबार हो रहा तीन दिन आप गुरु हाजिर भरो। सितंबर 12 नूं है पहला प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का 12 सितंबर नूं सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होया सी उस दिन गुरु हाजिर भरो। गुरु जी बख्शियां धन्नवाद करिए सत्संग भाई साहब तैयार होकर इंतजाम करके सरण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

जय कर करते कीरत होए सो गराख वडाई तोय रहाओ विश्वे चस्या कढ़िया पहरा तिथि वारी माहो हुआ सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश रागत नासरी मोहल्ला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मलयान लो पवन सब रो करे सगल गुण राय पूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत पेरी रहाओ सह सब नैन नान नैन है तोहे गाओ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस सब गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए किस दै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंकाओ होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा काम क्रोध नगर वह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हाले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड़ा हे कर डंडावत पुन वड़ा हे रहाओ साकत हर साधना जाने आदन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पावे है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अब नासी पुरख पाया परमेश्वर वह सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरी मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलहो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै जिनस रह नारे मन गुरमिल काज सवारी रहाओ एह संसार बेकार संसीमै तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पिया वह एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मनै बसेरा निज कर महल

0: श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हरका नाम जपत हो सुखिया
0: महाकरोड़ी बंधन पर
1: हरका नाम जपत निस्तर
0: अंक माया रंग तिकना हो जावे
1: हरका नाम जपत आगावे।

0: जो कहे सुमुक्ता होय। सुन मीता नानक गुणवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत, साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सुज्ञान,
0: साध के संग पूजे प्रभ नेरा,
1: संग सब होत निवेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक उपजतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी, साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर फुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पंचा,
0: साध संग हुए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर मैन,
0: साध के संग न कतहु पावे,
1: साध संग स्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग मन प्रसन्न प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
2: साधु।

0: परमानंदा।
1: साध के संग नाही हो ताप,
0: साध के संग तजै सब आप।
1: आपे जन साध बढ़ाई,
0: नानक साध प्रभु भरे आई।
1: साध के संग न कभू पावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस अगोचर लहै,
0: साधु के संग अजर सहै।
1: साध के संग बसे थान ऊंचा,
0: साधु के संग महल पहुंचे।
1: साध के संग गृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निधान,
0: नानक साधु के कुर्बान।
1: साध के संग न सब कुल उधार,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार।
1: साधु के संग सो धन पावे,
0: जग के सबको बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध के संग शोभा सुर देवा।
1: साधु के संग पाप पलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन।
1: साध के संग सर्व थान गम,
0: नानक साध के संग सबल जनम।
1: साध के संग नहीं कछु काल,
0: दर्शन भेटोत निहाल।
1: साध के संग कलूखत हरै,
0: साध के संग नरक पर हरै।
1: साध के संग इहा उहा सोहेला,
0: साध संग बिचरत हर मेला।
1: जो इच्छा सोई फल पावे,
0: साध के संग मिटत जावे।
1: पार ब्रह्म साध रिद बसै,
0: नानक साध सुन रसै।
1: साध के संग सुनो हर नाउ,
0: साध संग हर के गुण गाओ।
1: साध के संग न मनते बिसरै,
0: साध संग सर पर निस्तरै।
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
0: साधु के संग घट घट डीठा।
1: साध संग पहे आज्ञाकारी,
0: साध संग पहे हमारी।
1: साध के संग मिटे सब रोग,
2: साध मिटे संयोग।
1: साध की महिमा वेद न जानै,
0: गीता सुने ते तब ज्ञानै।
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर,
0: साध की उपमा नहीं पाए मूर।
1: साध की शोभा का नाही अंत,
0: साध की शोभा सदा बेअंत।
1: साध की शोभा

0: बृहस्पति ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप
1: जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख
1: जैसे सूर सर्प को शोक
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य मान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक
1: जो बसदा को खोदा को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
1: नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मनोय प्रगास
1: जैसे तारों पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के

0: नानक जिन प्रभ आप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।

0: ज्ञानी एक संग
1: ज्ञानी के होए चिंत
0: ज्ञानी का निर्मल मन
1: ज्ञानी जिस करे प्रवाप
0: ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये
0: ज्ञानी को बल बल जाइये
1: ज्ञानी को खोजे मेसर
0: ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ज्ञानी की कीमत ना है
0: ज्ञानी का सगल मन माहे।

0: तैसा मान तैसा अवमान,
1: तैसा रंग तैसा राजान,
0: जो वरदाय साई जुगत,
1: नानक वो पुरख कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जित जित कर रखे तै

0: अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार्य हरि
0: कई कोट भय तीर्थ वासी
1: कई कोट वन ब्रह्म उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तीसरोते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार
1: कई कोट कब काव विचार है
0: कई कोट नवतन नाम त्याग
1: नानक करते का अंत न पाव है
0: कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंध अज्ञानी
0: कई कोट कीर्तन कठोर
1: कई कोट अपेग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब कोहरा
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट
2: परदेश प्रमाहे
0: जित जित लाभ हो तेत तेत लगना
2: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति योगी
2: कई कोट राज रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पाथर बिरख न बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत्र
2: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
2: कई कोट देव दानवेंद्र सुक्षत्र
0: सगल समग्री अपने सूत तार
1: नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस तामस सातक
2: कई कोट वेद प्रांत मृत
0: अरसास कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे
0: कई कोट जख्य किन्नर पिसाच
2: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाज
0: सब ते निरह सब हूं ते दूर
1: नानक आप अलिप्त रहे अपरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
2: कई कोट नरक सुरगुण वासी
0: कई कोट जन्म जीवे मरे
2: कई कोट बहु नीक रहे
0: कई कोट बैठत ही खाहे
2: कई कोट कालह तक पाए
0: कई कोट किए धनवंत
1: कई कोट माया मह चिंत
0: जह जह पाणा तह तह राखे
1: नानक सब किछ प्रभु के हाथे
0: कई कोट भय बैरागी
2: राम नाम संकल लग लागी
0: कई कोट प्रभु कौ खोजंते
1: आत्म में पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यार।

0: काश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई युग तीनों में सार
1: कई बार पसरे उपासार
0: सदा सदा एक ओंकार
1: कई कोट कीने बहुपात।

0: सो अपने रंग
1: सब ते दूर सब हूँ कै संग
0: दूजे देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मरण गंजे आवे न जाए
1: नानक साध ही रहया समाए
0: आप उपदेश समझे आप
1: आपे रचिया सब कै साथ
0: आप किनो अपन विस्तार
1: सब काश उसका ओ करने हार
0: उसते बिन कहो किस होए
1: थान थनंतर एक सोए
0: अपने चलत आप करने हार
1: कौतक कर रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न

0: संत का दुखी जन्म मरै,
1: संत की दुख ना सुखते टरै,
0: संत के दुखी को नाही ठाओ,
1: नानक संत पावे तले मिलाए,
0: संत का दुखी आद बीच ते टूटै,
1: संत का दुखी किते काज ना पूछे,
0: संत के दुखी को उद्यान प्रमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: यो साध बिना मिटे की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किश नाहे,
1: अपन बीज आपे काहे,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
1: नानक संत पावे तले उवार,
0: संत का दुखी एवं बिल लाए,
1: जो जल भी नून मछली तड़पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पाव पींदन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: जो बुआड़ तिलके तुम्हें दुएला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सदमित्या कहत,
0: किरत निंदक का तुर ही पाया,
1: नानक जो सुपावे
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी नाम रहना जिवाइए,
0: संत के दुखी की पूजा

0: नाम के समुद्र सुन सर्वण
1: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए।
0: नानक चौथे पद में सुजन गत पाए।
1: रूप सत जा का सत अस्थान
0: सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जा की बाणी
0: सत पुरख समय समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए तिसे सफली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: सत नाम गुरते पाए
1: सत बचन साधु उपदेश
0: सत तेज जाके प्रवेश
1: सत निरत बूझे जे कोए
0: नाम जगत्ता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: जिस

0: जिस को होत परापत स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: बीस बिस्वे गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जान
1: सो सत गुर जिस हृदय हर नाओ
0: अनेक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता।

0: सच उपदेश सेवक को दे
1: मोह माया के संग न लेप
0: मन मह रख हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम मोह दुख तहते नासे
1: तपत माहे ढाए वरदाए
0: अनंद भया दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूरन उपदेसे
1: पौ जुका निर्भ से
0: सगल ब्याद मन ते खै नसे
1: जिसका साथ इन कृपा तारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: इत पाई चुके ब्रह्म गवन
0: सुन नानक हर हर जस श्रवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
0: कला तार जिन सगली मोही
1: अपने चरित्र प्रभ आप बनाए
0: अपने कीमत आपे पाए।

0: अष्टपदी संत जना मिल कर हो विचार
1: एक सिमर नाम अवतार
0: अवर उपाव सब मीत बिसारो
1: चरण कमल रिद माए उतारो
0: करण कारण सो प्रभ समरथ
1: दृढ़ कर गवो न वार वथ
0: एहो तन संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस राखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे
0: जिस तन को चार कूंट उठ पावे
1: तो तन हर सेवा से पावे
0: जिस सुख को नित बच्छे मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस शोभा को करे भली करनी
1: सा शोभा पज हर की सरणी
0: अनक उपावी रूप

0: भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण यार नीच जान
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व कुंड मुक्त मोक पाए
0: एक निमक हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग वड़ियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: बहु पूजन का प्रसंगीत
0: रसना जपती हर हर नीत
1: सो करनी सो

0: जब अकार इहो कछ न दृष्टिता
1: पाप पुन तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध किस संग कमात
0: जब इसका वरन जेह न जापत
1: तब हर्ष सो कहो किसे व्यापत
0: जब आपनो आप आप बार ब्रह्म
1: तब वो कहा किस हो पर ब्रह्म
0: आपन खेल आप बरतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रब केवल तनी
1: तब भक्त मुक्त कहो किस कहो गनी
0: जब एक है हर अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग कहो कौन तार
0: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: तब शिव शक्त कहो कित थाए
0: जब आप है आप अपनी जोत धरै
1: तब कवन निडर कवन कद डरै
0: आपन चल तो आप गने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपने आसन
1: जन्म मरण कहो कहा निरासन
0: जब पूरन करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो कित होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभु एका
1: तब चतर गुप्त कैसे पूजत लेखा
0: जब नाद निरंजन

0: अथ पूरी अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन देखत कुदरत श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान
1: मंत्र जामी पुरख प्रधान
0: यत मन बसै सो होत।

0: महान अनमानत
1: महामूढ़ काज भेद न जानत
0: महादेव को गैत सदा शिव
1: निरंकार का जीनत न पैव
0: अपनी बुद्ध है जेती
1: वर्णत पहन पहन तो तेती
0: तुमरा लखा न जाए पसारा
1: कह बद सजा प्रथम संसारा
0: कह रूप अनूप स्वरूपा
1: रंक पैव राव कह भूपा
0: अंदस जे रस्ते चकीनी
1: उत पोज खान बहर रज दीनी
0: फूल राजा है बैठा
1: कहो से मठ पैसा।

0: संत हो सो सिख सन्मुख हुए।
1: जे को गुरते वे मुख होवा बिन सतगुर मुक्त न पावे।
0: मुक्त न होत है कोई पुछो वेखिया जाए।
1: अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए।
0: मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए।
0: सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी।
1: बाणी तो गावो गुरु केरी बाणिया सर बाणी।
0: नदर कर्म हुए।

पर जिन मानस ते देवते किए करतना लगी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवा है

0: सची तेरी सिफत सची साला, सची तेरी कुदर सचे पातशाह। नानक सच ते आयन सच, जो मर जमे सो कच निकच।
1: महला पहला बड़ी वड्याई जा वड्डा नाउ, बड़ी वड्याई जा सतन्याउ, बड़ी वड्याई जा नेचल थाउ। वड़ी वड्याई जाने आलाओ, बड़ी वड्याई बुझे सब पाओ, वड़ी वड्याई।

तुम मात पिता हम बा तुम्हारी कृपा में सुख कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सग

0: शासंगा जी
1: बोलो जी
0: वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वास बोध पाछे दर्शन प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित करते अमरदास रामदास है सहाय अर्जुन हर गोविंद समरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग के सब दुख जाए तेग बहादुर समर है कारण उन्हें दयागता है सब चाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब चाई हुए सहाय दसा पातशाह के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार का तैन करके घर तथे बोलो जी वाहे गुरु गरीबनवास आप जी के पंच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड चकिया दे चढ़ाई ते वाहे देख डिड़की दादना प्यारे सत्यारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगड़िया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए कुबरियां लवाइया चरखड़िया से चढ़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सियावा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सिखी सुधे के सत सत सत आया तिना ही कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु पंजा तख्त गुरुद्वारे का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम किताब है जित आवण का सदका सर्व सुख होगा जहां जहां गुरु खालसा साहब का चरिया देख देख की फतेह बिरद की पैच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोरबाले बोलो जी वाहे गुरु सिखानु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान उत्साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहे गुरु गुरु गरीब प्रवाह पंच सदा शायद जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब गुरु गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ

रामदास महाराज जी कृपा कर दे भी जिन्हां दे हिरदे विच मेरे सतगुरु जी का शब्द वस जांदा है, नाम वस जांदा है। कोई कोई शरीर बाहरला रोगी होवे, दवाई दारू लैण करके कहिंदे जी रोग ठीक हो गया, पर एक गल चेता रखो, रोग लगा है, कोई शरीर बीमारी है। बंदा दवाइया जिन्निया मर्जी ले जावे, पर जिन्ना चिर विच मेरे गुरु की कला ना ना वरते, जिन्ना चिर विच मेरे गुरु की कला ना वरते, ता दवाई भी रास नहीं आती। मैं अपने को बोल कोई नहीं बोलता, हमेशा जतन करता गुरबाणी के दायरे अंदर एक प्रमाण देना है। गरीब निवास जी कहते औखद आए रास विच आप खलोया, जदों विच आप आके खड़ जाता है ना, फिर वह बहाना बन जाता है, करदा कृपा वह आप है, ते जदों वह कृपा करदा दवाई का तो एक बहाना बन जाता है। तो महाराज कहिंदे रोग खत्म हो जाते, लख जतन करते रहन, दवाइया चल दिया रहन, ऑक्सीजन लगिया रहन, पर जदों सवास खत्म हो गए ने, जिन्ने मर्जी डॉक्टर हो आए हो, पर जिसकी पूजे औद ते सह कौन दसो, उन्हू कौन रखेगा, जिदी उम्र ही लंघ गई है, जिदे सवास ही खत्म हो गए ने, जिन्ना मर्जी कोई जतन कर ले, ना जी ना ना, बाड़ी का बोल है उन्हू कोई रख नहीं सकता। ते जदों विच ओ वरत जांदा है ना, ता ओ ते मुर्दिया विच भी सवास पा जांदा है, जेड़े खीरले सवासा ते होण, ता महाराज कहिंदे मृतक कहो जीवालन हारो, ते मरिया नू भी जवा दिंदा है, प्रभ भाव है बिन सांस ते राखे मेरे गुरु दे बोल जुगो जुग अटल ने। हां इसे तरह शरीरक रोग ने, अज दा जिहड़ा बचन है, महाराज ने वड्डा रोग दी बात कीती है, होमे दा रोग है, विकारां दा रोग है, जिन्हां दे अंदर गुरु दा शब्द वस जांदा है ना, महाराज कहिंदे उहनां दे रोग सारे चले जांदे ने। सतगुरु महाराज जी दे अमृत वचन होमे रोग मानुख को, यह वड्डा रोग है, जिन्हों महाराज कहिंदे होमे दीर्घ रोग, यह वड्डा रोग है, यह चला जाना है अज गुरु दे शब्द द्वारे, पर महाराज ने बचन नाल दी नाल कीता है, जे वड्डा रोग है ते दवाई भी अंदर ही है, दवाई कोई बाहर नहीं है, गुरु शब्द भी अंदर है। होमे दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ता गोर का शब्द कमाहे, गुरु दे शब्द द्वारे ए रोग जावेगा। ए दा वैद कौन है, ए दवाई मिलदी कित्थों है, ए वैद मेरा गुरु है, जिन्हों महाराज कहिंदे मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, औखद है दवाई, नाम दी दवाई देवेगा, आखेगा मुख तो बोल प्यारिया सतनाम श्री वाहे गुरु, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा, मर कहते जमा दिया फैया कटिया जांदियां ने। होमे रोग मानुख दीना, काम रोग मैगल बस कीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, एक एक रोग करके बंदा जेडे संसारक होर जानवर ने खत्म हो जाते ने। हाथी नू ता एको ही रोग सी ना, उन्हू कहदा सी काम दा रोग सी, उहदे करके ओ पकड़िया गया, बस फिर मुहावत दे इशारे ते चलदा है, उन्हू कुट कुट के संगलां दे नाल सिद्धा करके, कुंडे दे नाल सिद्धा करके, उहदे इशारे ते चलदा, बस उसे रोग विच ओ खत्म हो गया। एको ही रोग सी, पर मनुख नू बड़े लगे ने, मैं जिक्र करना है। होमे रोग मानुखो दीना, काम रोग मैगल बस इना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, जिहड़ा भमक्कड़ है उड़दा आउंदा दीवे दी लाड़ते, कोई रूप है उहनू रोग लगा भी मैं रूप वेखना है, दीवे दा रूप वेखना है, बस पहली मुलाकात विच ही उहदी खंभ साड़ के थले सुट दिंदा है। दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, कुरंगा मींज है हिरण, जदों घंटे हेड़े दा शब्द वजदा है, कोई रोग है, शब्द ते दे प्राण निकल जांदे ने, रोग प्राण खत्म कर देवेगा कुरंगा। महाराज कहिंदे जिहवा रोग मीन ग्रसियानो, बासण रूप भवर बिन सानू, मच्छी नू इक्को ही रोग सी जबान दा, ते उसे जबान करके कुंडी विच फस गई, ते किसे दे पेट विच चले गई, किधर दी किधर चले गई। हुण जिहड़ा भौरा है उहनू इक्को ही रोग सी वाशना दा, सुगंधी लैणी है, फुल ते आके बैठा, सूरज मुंदिया गया, फुल जिहड़ा सी बंद हो गया, प्राण निकल गए। होमे रोग मानोको दीना, काम रोग मैगल बष्ट कीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी।
ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗਰਸਿਆਨੋ ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨ ਸਾਨੋ ਹੇਤ ਰੋਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਤ੍ਰੇ ਬਿਦ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬਧੈ ਬੇਕਾਰਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਧਰਤ ਸਭੋਗੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਹੇ ਸੇ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੂਟੇ ਬੰਧਨ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਗੱਜ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਅਲ ਪੰਜ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗਾ ਅਲ ਭੌਰਾ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਇਕਤ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ ਇਕਤ ਇਕਤ ਰੋਗ ਪਚੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕਤ ਇਕੋ ਤੋ ਰੋਗ ਪਚੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪੰਜ ਰੋਗ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪੰਜ ਰੋਗ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੂਤ ਆਮ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਸੂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਸੂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਕੇ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪੰਜ ਰੋਗ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਡਾਇਨੀ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸੱਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਗਮੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਹੁ ਰੋਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਧਰ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਸੱਤ ਤੇ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਗਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੌ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਹੁ ਰੋਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਮਨ ਮੁੱਖ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਵੈਤ ਈਰਖਾ ਨੌ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਏ ਪਵੰਦੇ ਸਤਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹੋ ਚਲੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਚੱਲਣਾ ਭੱਜ ਗਏ ਠੱਗ ਚੋਰ ਡਰਨ ਦੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਨਿਜ ਕਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ

संगत जी सब तो वड्डा पुन की है, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, बोलिया करो संज्ञा ना करो, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, सारिया तो वड्डा पुन कलयुग है जिदे विच जपना है सतनाम श्री। बाकी लोड़ बंदा दी सहायता मदद करो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है, पर उस पुन दे विच दिखावा तेरा दरवाजा ना बंद हो जावे, उस पुन विच तू जकड़िया ना जावे, पुन करके दे उदे तो उपर चले जाना है, दूर चले जाना है, कीता ही नहीं है। पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान, हां जी प्रधान प्रेसिडेंट इन्हू कहिंदे, सीधा प्रधान कह दो, मारा कहिंदे क्रोध की इहदा, हां जी बोलो प्रधान संगदे क्यों जे, मैनू भी तो आ ही जाता, सारे नू आ जाता, पर गुरमुख का क्रोध पता किदां दा हुंदा है, पानी च लंघते जाओ तो लकीर पैंदी है पिछों, खत्म है। मनमुख का क्रोध लकीर पत्थर ते है, क्रोध इहदा प्रधान है। तुहानू याद है काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढल, सुन मन मित्र प्यार है, सुन ये गल्लां गुरु द्वारे सुनिया जानिया ने, तां मन नू सोची आउणी है। क्रोध प्रधान हे कल मूल क्रोधं कदंच करना ना उपरसते, विख्यंत जीवं वस्यं क्रोध नृत्यं क्रोध जथा मरकट है, मम्मा रारा टैका हा हा मरकट है बंदर, हां जी मरकट है बंदर, कलंदर है बंदर नू नचना सिखाउंदा है, वो नाचियो घर घर बाहरों नचदा है, रोजी वह खांदा है। ते महाराज कहिंदे जदों क्रोध है ना कलंदर बन जांदा है, तां जीव बंदर बन जांदा है, ते नचदा है, दसा बंदिया ने पकड़िया होवे कहिंदा छड़ दिओ फलाने नू जाके मार दियागा, मारा कहिंदे नाच कराउंदा है, हे कलयुग दा मूल है, हे कल मूल क्रोधं कदंच कहिंदा, क्रोधी पुरुष दे अंदर दया ही नहीं आउंदी, कदंच करना ना उपर जाते, विख्यंत जीवं विषया वकारा विच गलतान कर दिंदा है, विख्यंत जीवंग वस्यं क्रोध नृत्यं क्रोध, नृत्यंग नाच जी नृत्यं क्रोध जथा मरकट है, जथा जिवें बंदर जथा मरकट है। महाराज कहिंदे इस करके क्रोध प्रधान, तो प्रधान किनू क्या महाराज ने, सगल पुरख में पुरख प्रधान जा कह हृदय वसै भगवान, असल विच ते सारे प्रधान ने जिन्हां दे हिरदे विच हां जी वसदा है सतनाम श्री। तुसी संगदे क्यों जे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कथा का विषय ऐसा है, थिमक थिमक जो बूंद है पर है, धरती विच समाइया जाण, हिरदे विच बाणी दा वासा हो जावे। क्रोध प्रधान महा बड दुंदर तह तिथे मन मा वासी राजा, मां वासी आकी होके राजा बन के मन जेड़ा है वह शरीर ते राज कर रहा है, जो जो कही जा रहा है जीव ओदे बस दुआले दुआले घूमी जाता है, बस जो जो कही जा रहा। एक दिन शब्द सुनाया सी, वो फिर उत्थे बात आ जानी है, ऐसो चर्ज देखियो कबीर दद के भोलै बरोलै नीर, हरी अंगूरी गधा चरै नित उठ हासै हींगै मरै, माता पैसा अमूहा जाए अमोड़, मस्त जेड़ा झोटा संडा दौड़दा है ना तेवे मन दौड़दा जा रहा है, माता पैसा अमूहा जाए कुद कुद चरै रसा तल पाए। महाराज कहिंदे तह मन मां वासी राजा, राजे का तो हुक्म ही चलता ना, काम तो बाकिया ने करना होता है, राजे का तो हुक्म ही चलता है, तह मन मां वासी राजा। एक गल तुहानू होर याद रहेगी, गुरु सवारी संगत जी जड़े फौजी हुंदे ने उन्होंने अपने शरीर नू भी कवर किया हुंदा है, कवर किया हुंदा, बुलेट प्रूफ जैटा पाईया हुंदियां ने, क्यों दूजे का वार ना चले तुहानू पता है, पर इस मन की जड़ी फौज है, मन ने भी अपना पूरा तैयारा किया है, वह की किया है, स्वाद सनाहा टोप ममता को, ममता दा हल्ट मैट पाया है, ते स्वादां दी बुलट प्रूफ जैकट पाई है। यही तां गल गुरु नानक महाराज ने जदों कलयुग कोल आया है, एक जदों सतगुरु महाराज दे कोल आउंदा दर्शन करदा, मीह बड़ा बरसाउंदा है, रोड़ां दी वर्खा करदा, कई कौतक करदा है, कुछ प्रभाव नहीं चलदा, ते जिस वेले महाराज दे सब कुछ बंद हो जाता, लम्मा शरीर धार के सतगुरु जी बैठे ने, जदों शब्द विचारिया है, मोती ता मंदर ऊसरे रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया।

राम भगत न कीनी मन रे कौन को मत तैलीनी। लैली ना खोटी बुद्धि आ गई रहा। तो महाराज ने की क्या सी, गुर की मत तू लेह याने भगत बिना बहुत डूबे सियाने। गुरुदेव ने ते क्या सी, गुर की मत जी आई कार। गुरु ने ते क्या सी, मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। कबुद्ध कमान चढ़ाई तृष्णा तीर तृष्णा रूपी तीर ने अगे तो अगे चलती है। रहे घट भीतर हिरदे विच ओ भाई भरावा इओ गड लियो ना जाई। ए बदी दा किला नहीं उजत्या जाना। ता गुरुदेव महाराज नु पुछ के महाराज जतना जे कृपा करो। ता महाराज

गुरसागति दिती सनु दम दमी भीड़ सत्कारी के खेड़ के चाल हकूमत ने सिंघा ते हमले की थी खेड़ के